जय गुरु गुरु निवास अंतर जामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तख्त सतखंड दरबार दियां हाजरे भरदे होए कीर्तन दे सतकाउ जो संगता लो बिनत माया हाजर होए जिस जाने विच माया हाजर कीती सो सो को जाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जन्म बसना दे अरुखता बख्शनी आसा मनसा संपूर्ण करनी यात्रा सफली करनी।

पंचम हरख दिसाख सुनावहे बंगालम मद माधव गावहे ललत बिलावल गावहि अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र पैरा।

वेद रीत काहू तासु विपरीत काहू त्रिगुना अतीत काहू सुरगुना समेत हो। काहू देवतान के दीवान मैं विराजमान काहू दानवान को गुमान मत देत हो। काहू इंद्र राजा को मिला तो इंद्र पद भी सी काहू इंद्र पद भी छिपाए छीन लेत हो। कातुहू विचार अविचार को विचारत हो काहू ने जिनार पर नार के निकेत हो। काहू वेद रीत काहू तासु विपरीत काहू त्रिगुना अतीत काहू सुरगुना समेत हो। काहू शास्त्रधारी काहू विद्या के विचारी काहू मार्त आहारी काहू नार के निकेत हो। काहू देववाणी काहू शारदा भवानी काहू मंगला मिड़ानी काहू श्याम काहू सेत हो। काहू धर्म धामी काहू सर्वठारगामी काहू जति काहू कामी काहू देत काहू लेत हो। काहू वेद रीत काहू तासु विपरीत काहू त्रिगुना अतीत काहू सुरगुना समेत हो। काहू जटाधारी काहू कंटी धरे ब्रह्मचारी काहू योग साधी काहू साधना करत हो। काहू कान फारे काहू डंडी हुए पधारे काहू फूक फूक पावन को प्रतिपा धरत हो। कातुहू सिपाही है क्या साधत सिलाहन को कहूँ छात्री हो क्या आर मारत मरत हो। कहूँ भूम भार का उतारत हो महाराज कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो। कहूँ गीत नाद के निदान को बतावत हो कहूँ नृत्यकारी चित्रकार के निधान हो। कातुहू पयूक हो क्या पीबत पीवावत हो कातुहू मयूक ऊक कहूँ मदपान हो। कहूँ महासूर हो क्या मारत मवासन को कहूँ महादेव देवतान के समान हो। कहूँ महादीन कहूँ द्रव के अधीन कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो। कहूँ अकलंक कहूँ मार्त मयंक कहूँ पूर्ण प्रजंक कहूँ शुद्धता की सार हो। कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुत्सात कु कर्म कहूँ धर्म के प्रकार हो। कहूँ पौनहारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जाति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो। कहूँ छत्रधारी कहूँ छाला धरे छाल भारी कहूँ छकवारी कहूँ छाल के प्रकार हो। कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नार को यकार हो। कहूँ वेद बानी कहूँ को की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ बेन के बजैया कहूँ धेन के चरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो। शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण हो के दाता महादान हो के निर्दोखी निरंकार हो। निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो। प्राण के बचिया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया की दो मानी महामान हो। विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो। जोबन के जाल हो के काल हूँ के काल हो के सतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो। कहूँ ब्रह्मवाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नाद को ननाद कहूँ पूर्ण भगत हो। कहूँ वेद रीत कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वाला सी जगात हो। पूरन प्रताप कहूँ इकादि को जाप कहूँ ताप को अताप कहूँ जोग ते डिगात हो। कहूँ बार देत कहूँ छल शिव छिनाए ले सर्वकाल सर्वठार एक से लगत हो। तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख योघर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखियत प्राणपति के। श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के। माते मतंग झरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे। भारी भुजान के भूप बलि बिद न्यावत शीश न जात विचारे। एते भय तो कहा भय भूपता अंत का नांगे ही पाय पधारे। जीत फिरा सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नंगारे। गूंजता गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविक भवान के भूपत कौन कने नहीं जात बिचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिना अंत का अंत के धाम सिधारे। तीरथ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक विषय है। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमा

छपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नराध जवंतर लोक राज करेंगे। कोट स्नान के जादिक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विशन सचिपत अंत फसेजम फास भरेंगे। जेनर श्रीपत के प्रसह पग तेनर

तुरंत कहु तीर्थ दान अपार कहु जग करम उदार कहु अग्नहोत्र अनूप कहु न्याय राज विभूत कहु शास्त्र सिमृत रीत कहु वेद स्यों विपरीत कई देश देश फिरंत कई एक ठौर स्थान्त कहु करत जल मह जाप कहु सहत तन पर ताप कहु बास बनहे करंत कहु ताप तनहे सहंत कहु गृहस्थ धर्म अपार कहु राज रीत उदार कहु रोग रहत अभर्म कहु कर्म करत अकर्म कहु शेख ब्रह्म स्वरूप कहु नीत राज अनूप कहु रोग शोक विहीन कहु एक भगत अधीन कहु रंग राजकुमार कहु

गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नभे हरि इहा हरि उहा हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभेक हरि अदोक हरि अद्वैक हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजांत्र हरि अमांत्र हरि सुतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखांड हरि अभांड हरि अडांड हरि प्रचांड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि थप हरि तप हरि जपो हरि जलस्तुहि थलस्तुहि नदीस्तुहि नदस्तुहि वृक्षस्तुहि पतस्तुहि छितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि पजस्तु अङ्भजस्तु अङ्रटस्तु अङ्ठटस्तु अङ्ग

हुकमल हारिगच गदहा विभूतदारी गिद्वा मसान बास करुई करत है। उगुमट बासी लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधी मरत है। बिंद के सदैया ता हिज की बडैया दैत बंदरा सदीव पाए नांगे फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे कै तरत है। भूतवान चारी चित छवना सब दुदाधारी पावन के आहारी सौ भुजंग जानियत है। तृण के बछिया धन लोभ के तजिया ते तो गौवन के जैया वृक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंच के बडैया दैत बगुला बिड़ाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनो जानी पै बखानी नाहे ऐसे न प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कह नाभ के उड़ैया सो चिरैया कै बखानिया। फाल के भुजैया ताहे बांदरी के जैया कह आदि सफिरैया ते तो भूत कै पछानिया। जल के तरिया को गंगेरी सी कहत जग आ के भचैया सोच कोर सम मानिया। सीरजा सिवैया सूरजा सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया का कवि कै पहचानिया। नारायण कच्छ मछ तिंदवा कहत सब कौल नाभ कौल जिह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजरा गोपाल सब अधेन चारी रिखी के स नाम के महंत लहियत है। माधव भवर अटीरु को कन्हैया नाम कंस को बधैया जा।

तपस्य आदि ब्रह्म से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक से उभय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के वेद और पुराण के सिमरत समूहन के होए होए बिताय है। मोनति मदार के ते अश्विनी कुमार के ते अंश अवतार के ते काल बस भय है। पीर और पिकाम्बर के ते गने न परत एते भूम ही ते होय क्या फेर भूम ही मिलय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसला चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्राप को दलत है। मानस महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ अभिमान भुज

शोर सदा घन घोर घन करो ई करत है। एक पाए ठाडे सदा बन में रहत, ब्रिज फूक फूक पाव भूम श्रावग धरत है। पहना अनेक युग एक ठार वास करे, काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन, भावना यकीन दीन कैसे कै तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जोगी या बैरागी बने, कब हूँ सन्यास भेष बन कै दिखावई। कहूँ पावनहारी कहूँ बैठे लाए तारी, कहूँ लोभ की खुमारी सौ अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैल गावे बारी, कहूँ दंड धारी होय कै लोगन भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है।

करता करेम सोई राज का रहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक जोत जान बो देह राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पै अनेक को भमाओ है देवता अदेव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देश

जैसे आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए क्या फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नाद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अब

का करत भछ कहते आछ वच हो पाछ उठ जाएंगे। कहते नाभ बीच आछ पाछ का करेंगे भज कहत का प्रताच हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहा थल कहा गगन के गौन कहा काल के बनाए सब।

रत कहते जल में डुबत कहते आग में जरत है। कहते गंग बासी कहते मदीना मका निवासी कहतक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कहते भूम में गड़त कहते सुअप चढ़त कहते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कहते जल में रहत कहते ज्ञान के विहीन जक जारी मरत है। शोध हर देवता विरोध हर दान बड़े बोध हर बोध का प्रबोध हर जापसी घस हर चंदन लगाए हर चुआचार पूज हर पाहन चढ़ाए हर लापसी गाह हर गुर नाम नाय हर माड़ी माट लीप हर भीतन।

न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदावंग सदा सर्व सर्वत सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अक्षय आद अद्वै अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अवै निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग।

अच्छा स्वरूप अद्वय अनाश अनतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनभूत तेज अनछिज गात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जह सत्र मित्र नहीं।

नहीं चैन चित्र, जह रंग रूप नहीं राग रैग, जह जन्म जात नहीं भर्म भेख, जह कर्म भरम नहीं जात पात, नहीं नेह गे नहीं पितृमा, जह नाम थाम नहीं भर्ग ब्या, जह रोग शोक नहीं सत्र साध, जह त्रासवाद नहीं देहना, जह आद अंत नहीं रूपरा, जह रोग शोक नहीं जोग जुगा, जह त्रास आस नहीं भूम भुगता, जह काल ब्याल कट्यो न अंग, अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग, जह नेत नेत उचरंत बै, जह अलग रूप कथत कतेबा, जह अलख रूप आसन अडोल, जह अमित तेज अक्षय अतोल, जह ध्यान काज मुन जन अनंता, कई कल्प जोग साधत दुरंता, तन शीत घाम बरखा संत, कई कल्प एक

सिमरत शास्त्र उचरंत वैद कई कोक काब कथत कतेब कई अग्निहोत्र कई पवन आहार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साक पै पात्र भाच नहीं तदप देव हो वद प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग आद करम कहूँ अग्निहोत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई कर्त भांत भांतन विचार नहीं नैकतास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्न हो

जोग धर्म कई सिमरत शास उचरत स्व कर्मा। निवली आद करम कहू हस्त दान कहू अश्वमेध मख को बखाना। कहू करत ब्रह्म विद्या।

अनगेत कहूं करते शास सिमरित उचार कई भजत एक पग निराधारा कई नेह देह कई कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्नि ताप कई जपत उर्ध लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पम प्रजंत नहीं तदपतास पायत न अंता कई कर्त कौट विद्या विचार नहीं तदप दिष्ट देखे मुरारा बिन भगत सकत नहीं परते पान बहु कर्त हो

जय जम्पोह जुगण जूह जुअंग भय कम्पोह मेर पयाल भुअंग तप ताप सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभियान खंड अभूत अछेद अछिया अनकाल अपाल दयाल सुअंग जह ठटियंग मेर अकाश भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जह रचियंग देव अदेव बरंग सबके नीदीन जमीन जमा जह रचियंग सर्व मकीन मका जह राग न रूप न रेख रुखंग जह ताप न साप न श्रोक सुखंग जह रोग न शोक न भोग भुअंग जह खेद न भेद न छेद छयंग जह जात न पात न मात पितंग जह रचियंग छात्र छात्र छितंग जह राग न रेख न रोग भणंग जह द्वाख न दाग न दुख गणंग जह अंडहते ब्रह्मांड रचो दस चार करे नवखंड सच्य रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रिय सिंदर बिंद नगिंद नगंग श्रिय जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रचरा अंडज जेत रच अंडज सेतज उत भुजंग किए देव अदेव सराद पिता अनखंड प्रताप।

0: नर नार न पूछ सके जाह किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांत गणंग भव भूत भविक भवान तुअंग जह अंडज से तज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पान प्रचंड बलि बन जास कियो फल फूल कली भुअ मेर आकाश निवासितंग रच रोज एकादश चंद व्रतंग दुत चंद दिने सह दीप दई जह पावक पान प्रचंड मई
1: कृपा

भूत
ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्

सूरज सिवंत कई पलट सूर्य सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वाका लखाए अनछिज तेज अनभ प्रकाश दाता दुरंत अद्वा अनाथ सब रोग शोक तेरा तरु

हीन अनभंजनाथ जल धल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम, जय रंग रूप नहीं एक धरम, जय शास्त्र मित्र दो एक सार आच्छा।

तकासे महा रूप हूं के रासे है अनासी कह कह मानिया जंत्र हुना जात जा की बाप हुना माता की पूरना प्रभा की सोशटा कह अनमानिया तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह कह जानिया तेज हूं को तर है के राजसी को सर...

छीर कैसी छीरावध छाच कैसी छत्रा नेर छपाकार कैसे छब काल इंद्री के कूल के हंसनी सी सिहारो महीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारा से पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सूरा से सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गाढ़ खीरत तिहारी रही मालती से फूल के फटक से कैलाश कमाऊ गढ़ का

अहंतद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापह जपह बेनता तेरे अनेक पड़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद परख अपरंपर करता जी तुद जेव डियावर ना कोई तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब कोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो तौ भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हाँ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनू कृपा करहे तन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा अवर ना कोए तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरडै भैले निवासा पाणी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक नचेतस मूड मना हर बिस

मिल सात संगत भज केवल नाम, शरण जाम लाग भौ जल तरन के, जन्म व्यर्था जात रंग माया कह रहा। जप तप संयम धर्म ना कमाया, से

ते बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतबुज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा हुए बैठा काहूं सुमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तुत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे असुज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हाँ रिद सिद्ध घरमो सब होई दुष्ट छा छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहीं उबारा।

मुख चौपई सम सत्रह सैस भणी जय अर्ध सैस हुन तीन कहे जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपई मन अग्नि स प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबहु नह द्याऊ कान सुन पहचान नतन सो लिव लागी मोरी पग।

मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। तिन बिदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय। सब सिखन

धर्म जद के चाय सवैया। धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारे। देह

कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बा स्वर्ग वर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आत ब्याज छह सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वधी

महाराज अंतर जामी सतगुर सचे पातशाह जी महाराज साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी के पावन पवित्र स्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबिचल नगर साहेब विखे पातशाह जून 1984 विच ऑपरेशन ब्लू स्टार नीला तारा दे तहत पातशाह मौके दी सरकार वल्लों कीते जुलम दा टाकरा करदे होए शहीदियां पाईयां सिंघा सिंघणियां दी शहादत नूं समर्पित पातशाह कीर्तन दरबार होया है गुरद्वारा बोर्ड दे सहयोग नाल कीर्तन दरबार करवाया गया पातशाह सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत पुरजा पुरजा कटमरै कभू न छाडे खेत जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर तली गली मेरे आओ इत मार्ग पैर धरी जय सिर दीजे कान न कीजे जी गरीब निवाज जिना जिना जिना जिना ने पातशाह धर्म दी रख्या लई शहादतां प्राप्त कीतियां पातशाह तिना दी शहादत नु समर्पित कीर्तन दरबार होया पातशाह पढ़ी सुनी बाणी सचखंड विच प्रवान करनी बाणी दा महात्म दर आईया संगतां दे ताई बख्शना तिना शहीद सिंघा सिंघणियां दे ताई बख्शना तिना दे परिवारां दे ताई बख्शना पातशाह तिना शहीद परिवारां दे शीश ते मेहरा भरिया हथ रखना सदा ही आप जी ने पातशाह तिना परिवारां दे अंग संग सहाई रहना परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला रखनी जी महाराज जी गरीब निवाज इस वेले कीर्तन दरबार दे समाप्ति जी की अरदास से गुरमुख प्यारे मिल हो जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिल